सभी को शताक्षी का चेयर्स। वैसे जो ठंडी और ताजी हवा है ना, ये आपको ये बताती है कि लाइफ में रिफ्रेश होना किसे कहते हैं, और रिफ्रेश बटन जो है ये बेसिकली आपकी बन जाती है। ये आपको ये बताती है कि लाइफ में अगर आप सुबह उठें और सपोज उजाला तो हो लेकिन कहीं पर भी ठंडी हवा ना हो, फ्रेश एयर ना हो, तो वो सुबह जो है वो सुबह भी घुटन भरी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसा किसी भी मॉर्निंग नहीं होता है, आप एक फ्रेश एयर फील करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वो एयर होती है, और आप इजिली जब ब्रीद इन करते हैं तो आपको लगता है कि यार बस यही ऑक्सीजन तो हमें चाहिए थी, बिल्कुल ताज़ी फ्रेश जो हमें अंदर तक पूरा हील कर रही है, हमें फ्रेश फील करा रही है और हमारे अंदर एक नई एनर्जी दे रही है। उसी एनर्जी के नाम ये अगला ट्रैक सुनिए, और चलिए अपने वॉल्यूम्स को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए रेडियो सेट्स के और एंजॉय कीजिए इस गाने को। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्मानी सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

जी आज आप एनसीसी शो को इस वक्त सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपके अपनी रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आपकी मॉर्निंग दोस्त सताक्षी के साथ। देखिए बहुत सारी बातें तो हमने आपसे कर ली, लेकिन अभी आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, एकदम दिल वाली बात। जी हाँ, और वो ये है कि बड़े काम को शुरू करने के लिए हमें सबसे बड़े होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू करने के लिए हमें पहला कदम उठाने की जरूर जरूरत है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि मंडे से करेंगे या अगले महीने से शुरू करेंगे या जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब करेंगे, लेकिन सच मानिए वो परफेक्ट वक्त कभी आता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। तो आज से ही बल्कि अभी से ही अपने सपनों

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस मी सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। आपके साथ हमारी ट्यूनिंग कुछ खास बैठ चुकी है, बिल्कुल रेडियो सेट्स की वेव्स की तरह। और देखिए इस वक्त हमारा सिग्नल भी आपके साथ बिल्कुल क्लियर है ना, वो सिग्नल जो सीधे यहाँ से निकलकर, मेरे दिल से निकलकर आपके दिलों तक पहुंच रहा है। वैसे दिलों की वाइब्स भी बड़ी ही खास होती हैं, कभी तो दूर रहकर भी मिल जाती हैं और कभी पास रहकर भी अनजानी सी लगती हैं। तो भाई ये वेव मीटर जो हमारे दिल का आपके साथ है, ये हमें और आपको करीब रखे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और भाई कोशिश तो मेरी यही रहती है कि इस वेव मीटर को आप फील कर पाए और आपका दिल हमारे दिल के और भी करीब आ पाए। तो अपने दिल को थोड़ा और करीब लाते हैं, चलिए इस अगले ट्रैक के साथ। अभी स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 क्लब स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल marriage celebrant since 2003.

हैपेंस, आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। वेलकम बैक। जी हाँ, इस मॉर्निंग आपके साथ हूँ मैं। और अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो भाई देखिए, आप हमेशा यही करते हैं कि इट हैपेंस में हमेशा लेट ही पहुँचते हैं। भाई जरा उठ जाइए और बढ़िया सी कॉफी देखिए आपके लिए इंतजार कर रही है। वैसे एक बात कहूँ, सुबह सुबह जब चाय या कॉफी आपके होठों को छूती है ना, तो लगता है कि मानो हर सिप के साथ थोड़ी सी एनर्जी अंदर जा रही है ना। और इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह की कॉफी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि ये आपकी जो लेजीनेस है ना उसको दूर करती है। और इसीलिए कुछ लोगों की आदत है कि भाई शुरुआत तो करेंगे दिन की गर्मा गर्म चाय या कॉफी के साथ। हाँ, तो भाई वो एनर्जी। और पता नहीं क्यों डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई नहीं पियो कॉफी, नहीं पियो चाय, लेकिन कुछ लोगों की तो एनर्जी इनसे जुड़ी हुई है और वो बेचारे क्या करें। तो वो कुछ नहीं करें यार। देखिए, जो आदत ना, मुझे लगता है वेरी फ्रेंकली कि जो आदत आपकी बचपन से पड़ी है, जो आदत जवानी के दिनों से पड़ी है, उसको क्यों ही छोड़ना है। छोड़ना तब है जब वो आपको नुकसान करने लगे या डॉक्टर्स कहें कि भाई अब ये नहीं छोड़ोगे तो बीमार पड़ने लगोगे, है ना। उस केस में छोड़ना बनता है, लेकिन अगर बॉडी को कुछ नुकसान नहीं दे रही है, आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो चुकी है, तो क्या ही जाता है अपनी जिंदगी को जीने में। आइए एक और ट्रक सदाक्षी के साथ इसी बात पे एंजॉय कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 1701 एम।

वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी 1701 एम पर। तो भाई, हर सुबह के साथ, हर दिन के साथ एक सूरज भी आता है, वो सूरज जो हर तरफ उजाला फैला देता है। सोचने वाली बात है, कभी कभी सोचती हूँ मैं ये बैठकर, तो मुझे लगता है कि यार कितना अमेजिंग है ना, रात होती है सब अंधेरा, सब काला, लाइट्स ऑफ कर दीजिए बाहर की सड़कों की, तो शायद आपको कुछ दिखाई भी ना दे। अगर चांदनी रात ना हो, चांद आपका साथ ना दे रहा हो, तो कुछ नहीं दिखेगा। हम सब एक दूसरे से टकराएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, जाने क्या क्या। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, एक सूरज आता है, रोशनी आती है, इससे खूबसूरत नेचर की और क्या खासियत हो सकती है ना। तभी शायद किसी ने क्या खूब लिख दिया है कि सूरज रोज सुबह समय पर आता है, हमें ये याद दिलाने के लिए कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, उजाले की जीत पक्की है। और उसी जीत के नाम एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक अभी, और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम पर।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जिंदगी बदलती है, वक्त बदलता है, उम्र बदलती है, लेकिन कुछ यादें ना जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं दोस्तों। जैसे बचपन की यादें, जब एक साथ सारे के सारे लोग सोया करते थे, जब एक उठो की आवाज मम्मी किचन से लगाती थी और सारे के सारे धीरे धीरे उठना शुरू कर देते थे, जब एक ही रेडियो सेट की आवाज पूरे घर में गूंजती थी और सबसे पहले जो गाने प्ले होते थे उस पर वो होते थे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, भक्ति गाने, और उन भक्ति गानों के साथ हमारे अंदर भी स्पिरिचुअलिटी भरती थी। मैंने देखा है कि उस जमाने के जो बच्चे थे उनको आज भी भक्ति सॉन्ग्स जो हैं वो बड़े दिल से याद हैं, क्योंकि वो रोज का रूटीन थे, उनकी आंख ही उसी के साथ खुलती थी। अब थोड़ा डिस्को या फिर रॉक म्यूजिक के साथ खुलती है। फिलहाल वक्त कितना भी बदल जाए, मैंने कहा ना कुछ यादें कभी नहीं बदलती हैं, और उन्हीं पाकीज़ा यादों के नाम ये अगला ट्रैक है। इसे एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ यूं ही सुनते रहिए। इट हैपेंस।

दोस्तों अब ये वक्त है आज आपसे इजाजत लेने का। भाई आज आप जब अपने काम पर निकलें तो किसी दबाव में मत निकलिएगा, क्योंकि आज आपको अपने लिए, सिर्फ अपने लिए एक नया दिन क्रिएट करना है, उसे एंजॉय करना है और अपने हर सपने की तरफ एक नया कदम बढ़ाना है। और जब भी आप सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो किसी प्रेशर या फिर स्ट्रेस में नहीं बढ़ सकते। खुले माइंड से, खुले दिमाग से, फ्रेश थॉट्स के साथ और एक चेहरे पर प्यारी सी स्माइल के साथ ही आपको लाइफ में अपने ड्रीम्स की ओर आगे बढ़ना है, राइट जी। तो बस ख्याल रखिए अपना, अपने सपनों का, अपने अरमानों का, और मेरी होती है आपसे कल एक और मुलाकात इसी सफर में। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101.1 एमटीजीआर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दे टॉप एक्टर्स दे विचो एक हैगे ने शाहिद कपूर, जो इन दिनी अपनी आने वाली फिल्म ओ रोमियो दे प्रमोशन विच लगे हुए ने। इस फिल्म विच शाहिद कपूर नू तृप्ति टिमरे दे नाल लीड रोल दे विच देखा जाएगा। ओ रोमियो दी जे गल करिए तां ओ रोमियो दी रिलीज तो पहला मैं सोचा कि क्यों ना तुहानू कुछ शाहिद कपूर दी चुनिंदा उन्हां फिल्मां बारे दसां जो बेस्ट फिल्म आ रही है, जिन्हां ने निर्मातावां प्रोड्यूसर्स दी चांदी करती सी उन्हां नू बहुत ज्यादा कमाई करवाई सी। यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते होंगे कि शाहिद कपूर नू कास्ट करके असी सही फैसला लिया है ना। दसा उन्होंने फिल्मों बारे दस दिया, पर पहला सुनो एक गीत।

जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवाणी 101.3 संदेश अलग दिनाल से बने हुए। जदों जदों इंडिया दी बेस्ट फिल्मां दी गल होगी तां नाम हैगा है जिहड़ा ओह पद्मावत दा तां जरूर आऊगा, क्योंकि पद्मावत नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। जिन्नी प्रेज इस दे विच रणवीर सिंह दी नैगेटिव रोल दे विच होई सी, उन्ने ही प्रेज इस दे विच एक शांत जे महाराजा दे रूप दे विच शाहिद कपूर दी भी होई सी। जी हां, संजय लीला भंसाली दे निर्देशन विच बनी सी फिल्म पद्मावत। ते शाहिद कपूर दी फिल्म इह जिहड़ी पद्मावत है उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 550 करोड़ तो उपर का बिजनेस किया। शाहिद कपूर के हुण तक के करियर की सब तो ज्यादा कमाई करन वाली फिल्म बन गई सी। बहुत ज्यादा प्यार मिलिया सी इस किरदार नूं भी शाहिद दे नूं।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो.
11: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
10: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
11: बिल्कुल. ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी वंसर आवारे ते चार छे संदेश अलग दिन से बने हुए लव स्टोरीज दी रहंदी दुनिया तक जदों जदों गल होगी जदों जदों गल होगी ना के कहा जाऊगा कि लव स्टोरी बहुत सोहनी है कि उदों उहदा नाम कबीर सिंह दा नाम है अजिहा नहीं हो सकना क्योंकि कबीर सिंह बहुत ही शानदार बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। ते रणबीर सिंह रणबीर नहीं नहीं नहीं नहीं शाहिद शाहिद कपूर दी बेस्ट मूवीज दे विचो एक है कबीर सिंह। ता शाहिद कपूर दी रोमांटिक ड्रामा हैगी है जिहड़ी कबीर सिंह इसने दुनिया भर दे विच बहुत शानदार कमाई कीती सी 377 करोड़ तो पार दी कमाई कीती सीगी। ते इस मूवी दा निर्देशन संदीप रेडीवांगा ने कीता सी जो हुण दोबारा तो नाल नजर आ रहे हैगे ने रोमियो दे विच शाहिद कपूर दे शाहिद कपूर दी रोमियो नूं डायरेक्ट भी संदीप रेडीवांगा ने ही कीता। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖੈਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 101 ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक मूवी आई सी ना रोबोट वाली, रजनीकांत दी, याद आया ना? ऐश्वर्या राय दे नाल बहुत ज्यादा सोहनी सी। उस तो बाद उसका सैकेंड पार्ट भी आया सी, उसनू इना प्यार नहीं मिल सकिया सी। पर रोबोट वालियां फिल्मां हुंदियां ने जिहड़ियां उह कमाल कर जाणो तां कमाल दी गल हुंदी ने। जिवें रजनीकांत कमाल कर गए सी, शाहिद कपूर भी कमाल कर गए सी। तेरी बातों में उलझा जी याद विच, बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है। इस दे विच रोबोट शाहिद कपूर ने ही कृति सैनन बनी सी। इनी ज्यादा सोहनी रोमेंटिक कॉमेडी सीगी, जिसका म्यूजिक भी शानदार, डांस स्टेप्स हले तक वायरल, म्यूजिक भी शानदार, डायलॉग भी शानदार, एक्टर्स भी शानदार, कहानी भी शानदार। ताही ता इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की सी। वधिया फिल्मों के विच गिनी जाती है।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पी ए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: भैरतमान को दो ही चीजा होंदिया ने, एक शांति ते दूजा युद्ध। व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देख करोड़ इन एंड एज सरपंच।
2: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
1: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरबाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
3: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे थे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसानी 101 ते जी आर छे संदेश अलग दे नाल सिपाणे होयो। अगला जेड़ा नाम आंदा हैगा ओ है जी आर राजकुमार दा। इसका एक गीत आया सी साड़ी के फॉल्सा, वो अज तक सुनिया जाता है, लोग सब बहुत पसंद करते ने, डांस होंगे ने अज भी ओते। कहानी एवरेज सी मतलब ठीक ठाक फिल्मां दी लिस्ट विच इस नूं रखदे आ। सोनाक्षी सिन्हा सी लीड रोल दे विच, इस दे विच ऑपोजिट शाहिद कपूर ते। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ तो पार दा बिजनेस इसने कर लिया सी, पर मेरे परसनल एक्सपीरियंस दे नाल मैनूं एवरेज मूवी लगी सी, बट हाँ शाहिद दी एक्टिंग इस दे विच भी बाकमाल सी।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी वंसन वारे ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक बड़े साल पहला मूवी आई सी जिस दे विच बहुत सारे कलाकार सी, शाहिदा सी, शाहिद की गल कर रहे आपां, शाहिद दे नाल नाल आलिया भट्ट भी सी, दिलजीत दोसांझ भी सी, करीना कपूर भी सी। बिल्कुल सही तुसीं गैस कीता। गल कर रही हां मैं फिल्म उड़ता पंजाब दी। उड़ता पंजाब दे विच ना शाहिद कपूर दा किरदार हैगा जिहड़ा ओह टोटली डिफरेंट सी। ड्रग एडिक्ट एक नौजवान बनिया सीगा ओह, ते बने सी बड़ा वधिया एक्टिंग कीती सी, नो डाउट बहुत ज्यादा सोहनी एक्टिंग। इस दे विच चारां ही किरदारां ने बहुत सोहनी कीती सी, ते स्टोरी भी इसकी लाजवाब हैगी है। ते ताही ता ए उड़ता पंजाब हैगी है जिहड़ी ओह 100 करोड़ दे नेड़े तक दे कलैक्शन दे विच पहुंच गई सी। कई साल पहलां दी गल कर रही हां मैं, तकरीबन एक दहाका हो गया है। इस फिल्म विच शाहिद ने तेजिंदर सिंह उर्फ गबरू का किरदार निभाया सीगा।

0: KR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखें. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: शांति ते दूजा युद्ध व्हाइट हिल स्टूडियोज लेके आ रहे ने पंजाब दा एक्शन हीरो देव करोड़ इन एज सरपंच।
1: सरपंच सिर्फ ते सिर्फ पिंड दा होना चाहिदा, किसी राजनीतिक पार्टी दा नहीं।
0: सरपंच एडिशनली स्टारिंग जैस्मीन बाजवा, गुरपाल सिंह एंड सरबजीत चीमा। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलनगाबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: है जिंदगी

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे हो आप? जी हाँ, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कैसा फील कर रहे हैं? कैसा जो है वो आपका पूरा का पूरा चल रहा है? जिंदगी कैसी चल रही है? जी हाँ, मतलब काटनी नहीं है, जीनी है और खूबसूरत तरीके से जीनी है, ये हमेशा याद रखना है। जी हाँ, तो जिंदगी काटने और जिंदगी जीने में बहुत बड़ा फर्क है। और हम अपनी आए दिन की जो मशक्कत होती है ना, उसमें भूल जाते हैं कि जिंदगी जीना क्या होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी जो चीज़ करने का मन करे ना, वक्त निकाल के उसी वक्त उसे कर लीजिए, आगे के लिए मत छोड़िए, क्योंकि आगे कल किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, और वक्त जो है वो बीतता जाता है। आप अगर कहीं घूमना चाहते हैं तो छुट्टियां लीजिए और घूमने जाइए। कुछ करना चाहते हैं तो अगेन छुट्टियां लीजिए और वो कीजिए। मतलब कल के लिए मत छोड़िए कि नहीं यार आज कैसे हो पाएगा, कल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हाँ, सो ये जिंदगी जो है वो ऐसी चलती रहेगी और पैसे भी हम कमाते रहेंगे। जिंदगी जीना मत भूलिए, यही मेरा आज का मंत्र है। इसी के साथ करते हैं शुरुआत। और आपको तो पता ही है, शुरुआत हमेशा बढ़िया होती है और बढ़िया गानों के साथ होती है, लेकिन सबसे पहले होता है एक बहुत ही खूबसूरत हेल्दी रिचुअल, विच इज डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। हम हमेशा कहते हैं कि कैसे ये आपको हेल्प करती है प्रोडक्टिव बनने में, काम बनाती है, फोकस्ड बनाती है। सो आइए करते हैं सबसे पहले। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ बिना देर किए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम के एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। और इस खूबसूरत गाने में जो आवाज आपको सुनाई देने वाली है और सुनने को मिलने वाली है, वो है श्रेया घोषाल जी की। इस खूबसूरत सी आवाज से अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है, राइट?

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं सीधा सबसे पहले मौसम की तरफ। टेम्परेचर क्या कह रहा है, मौसम क्या कह रहा है, कैसी अंगड़ाई लेने वाला है और कब क्या करने वाला है, आइए जरा जानते हैं। मतलब प्रिडिक्शन हम आपको बता सकते हैं, एग्जैक्टली क्या करने वाला है वो तो कोई भी नहीं बता सकता, बट जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है उसके बारे में बताएं तो मैक्सिमम टेम्परेचर आज रहा 20 डिग्री सेल्सियस और अगर अभी की बात की जाए तो 19.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है, बट फील आपको 17.3 हो रहा है या एग्जैक्टली ठंडी ठंडी ठंडी।

में थोड़ी बहुत मुझे नजर आ रही है कहीं कहीं पर, और कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा भी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं, मतलब 9 से 12% बीच में, और फिर उसके बाद जो है मुझे सब कुछ आ रहा है। कहा कि ठंड जो है वो बढ़ गई है, रात में जो है वो भी तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप देख पाएंगे। और इसी के साथ अगर बात की जाए एयर क्वालिटी की, तो एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार, यानी कि फिर। और ये हुई आज की बात यानी कि मंडे की। अब जरा ट्यूसडे की बात की जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 40% चांसेस यहाँ बारिश होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, 40% चांसेस हैं बारिश होने के। वहीं वेडनेसडे की बात की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 10% चांसेस हैं बारिश होने के। तो यही है, बहुत ही जबरदस्त मौसम है और ठंड है, तो ठंड में अपने आप को कवर करके रखिए। जी हाँ, और फैशन भी एकदम ठंड ठंड वाला कीजिए, मतलब आपको पता ही है, अपने आपको कवर करके रखना, कोजी रहना सबसे अच्छी चीज है। और मैं यही कहूंगी कि ठंड है तो मक्की दी रोटी तो सरसों दा साग दा मजा लीजिए, मतलब वो तो ठंड के साथ ऐसे एसोसिएटेड है ना, मतलब जब ठंड आती है तो मक्की दी रोटी और सरसों दा साग जो है वो सबसे पहले आता है, उसके साथ लस्सी हो जाए तो और भी बात बन जाए। सो ट्राई कीजिए ये कॉम्बिनेशन अगर आपने नहीं किया है। और इसी के साथ यहाँ पर मौसम के साथ अब थोड़ा मन भी हम लगा लेते है, मनवा लागे।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार चेनीविया के साथ। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और बता दिया गया है आपको मौसम के बारे में भी। अब जरा चलते हैं फरमाइशों की तरफ, आपकी फरमाइशों के बारे में बात हो जाए। और अगर आपको पता नहीं है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप अपने पसंदीदा गाने फरमाइश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, इनफैक्ट किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक फोन नंबर डायल करना है अपने फोन में और आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी कर सकते हैं हमें, और अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। सो नंबर क्या है? नंबर है +91828887701। आई रिपीट, +91828887701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं, हमारी तरफ से एक और बहुत ही बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, एंड नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वेडिंग ऑफ द सेंचुरी. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेविस केल्सी एंड टेलर स्विफ्ट वेडिंग. जी हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि शादी जो है वो होने वाली है, लेकिन आउट शादी जो है वो दोनों ने पहले ही कर ली थी, कुछ दिन पहले ही. और जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ वो रिसेप्शन पार्टी थी विद थाउजेंड ऑफ गेस्ट. जी हाँ, मतलब 1000 से ज्यादा गेस्ट जो है वो वहां पर पहुंचे थे, और मतलब सबके सब ए लिस्टर्स. या वी आर टॉकिंग अबाउट ए लिस्टर्स. ट्रेविस केल्सी एंड टेलर स्विफ्ट की शादी में दुनिया के सबसे बड़े सितारे जो है वो पहुंचे थे. फिर चाहे सेलिना गोमेज हो, जी जी हदीद हो, लैना डुनहम हो, डकोटा जॉनसन हो, स्टीवन स्पिलबर्ग हो, या फिर बियॉन्से, जेजी, मतलब किसकी बात आप कर रहे हो. डुआ लिपा से एड शीरान से लेके हग ग्रांट से लेके ग्राहम नॉर्टन से लेके सबके सब बड़े सितारे जो है वो इनकी रिसेप्शन में पहुंचे थे. जी हाँ, मेडिसन स्क्वायर गार्डन. मेडिसन स्क्वायर गार्डन के बारे में मैंने आपको फ्राइडे को ही बताया था कि कैसे वो जो वेन्यू है वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक रहा है, और वहां पर आइकॉनिक चीजें ही होती हैं. एंड लेट्स बी रियल, टेलर स्विफ्ट जिस हिसाब से यूएस की इकोनॉमी में जो है मनी इंजेक्ट करती है, जिस हिसाब से उन्होंने यूएस की इकोनॉमी को काफी बार संभाला है, ऐसा कहा जाता है. आई एम नॉट जस्ट सेइंग, ऐसे ही ऐसा कहा जाता है कि टेलर स्विफ्ट जितना अर्न करती है बाय जस्ट हर टूअर्स, वो ही इतने ज्यादा पैसे जो है वो इंजेक्ट करती है यूएस की इकोनॉमी में. सो ऑफकोर्स शी इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटीज, और मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटी अगर वो हैं तो भी गलत नहीं होगा. मतलब उन्होंने बियॉन्से वगैरह को पछाड़ दिया है बहुत बुरे हाल से. कौन सा अवार्ड उनके पास नहीं है, ईएमएज, वीएमएज, ग्रैमीज, लेकिन अब उनकी शादी ने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया. मतलब कोई ऑफिशियल पिक्चर नहीं है, बट जो भी पिक्चर्स है उन्होंने ही इंटरनेट ब्रेक कर दिया. इमेजिन. सो यहाँ सबके सब बड़े बड़े सितारे वहां पर पहुंचे थे. न्यूयॉर्क में बड़ी लंबी सी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जो कि सबके सब टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की रिसेप्शन में पहुंचे हुए थे. नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल पिक्चर्स बिकॉज वी आर गना लव इट एंड वी रियली वांट टू सी. अगर आप चाहते हो ये जानना कि कौन से डिजाइनर के अटायर्स उन्होंने पहने थे, तो ऐसा सुनने में आया है कि डियोर के बनाए हुए अटायर्स जो हैं, वेडिंग अटायर्स जो हैं, उन्होंने पहने थे. बाकी आगे की खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल, और हम यही कहेंगे कि प्यार, साथ, और सबसे खूबसूरत जो ये आपकी एक दूसरे का जो मिलन है वो हमेशा बना रहे. मतलब ये जो साथ है और ये प्यार जो है वो हमेशा बना रहे, हमारी यही है दुआ ट्रेविस केल्सी एंड टेलर स्विफ्ट को. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
4: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
3: अच्छा, वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
4: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ. तो दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया से बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और फुटबॉल के बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं ये अनाउंस. टॉक अबाउट रोनाल्डो फर्स्ट, क्योंकि उसके बाद मैं नेमार जूनियर की बात भी करने वाली हूँ. सबसे पहले रोनाल्डो, जिन्होंने कह दिया है कि ये वाला वर्ल्ड कप उनका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है. जी हाँ, आपने सही सुना. आपको बता दें कि रोनाल्डो 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं. वो 2006 से फीफा वर्ल्ड कप में उतरे हैं. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 पूरे 6 वर्ल्ड कप. एंड रोनाल्डो उन लोगों में से एक है जिन्होंने इन सारे के सारे वर्ल्ड कप में नए नए रिकॉर्ड्स बनाए थे. एक रिकॉर्ड जो कि उनके नाम है वो है कि उन्होंने 6 के 6 वर्ल्ड कप में स्कोर किया है. मतलब ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 6 के 6 वर्ल्ड कप्स में स्कोर किया है. जी हाँ, एंड दैट्स रोनाल्डो फॉर यू. बट ये कहना कि वो अब अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे और ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो लास्ट होने वाला है. इनफैक्ट उनकी बहन ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था और इस तरफ इशारा किया था कि दिस विल बी हिज लास्ट डांस. जी हाँ, ये वर्ड्स जो हैं, ये शब्द जो हैं उनकी बहन ने इस्तेमाल किए थे और उसके बाद अब रोनाल्डो ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर लिया है. आपको बता दें कि स्पेन के साथ उनका शोडाउन जो है वो होने वाला है और इसी से पहले उन्होंने ये बोला है. एंड आई हैव टू से कि रोनाल्डो के जितने भी फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू रोनाल्डो ना, कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको भगवान माना जाता है फुटबॉल का. एंड रोनाल्डो स्टैंड्स टॉल व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट लेजेंडरीएस्ट प्लेयर्स. रोनाल्डो एंड मेसी दो एक ऐसे चुनिंदा सितारे हैं जिनकी चमक हमेशा आसमान में और फीफा के आसमान में जो है वो रहने वाली है, हमेशा चमकते रहेंगे ये दोनों ही। सो या ये कहा गया है कि स्पेन के साथ उनका मैच जो है वो लास्ट ना हो, ये वो कर रहे हैं होप, बट ये वर्ल्ड कप जो है वो उनका लास्ट होने वाला है। सो आप मुझे बताइए, इफ यू आर रोनाल्डो फैन, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा फील हो रहा है इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद? बिकॉज आई एम फीलिंग क्वाइट इमोशनल राइट नाउ, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ रोनाल्डो बाय द वे। या मुझे मेसी की भी बहुत अच्छी जो गेम पसंद है, बट द थिंग इज कि रोनाल्डो हैज बीन माय फेवरेट फॉर सो लॉन्ग, सो आई एम फीलिंग इमोशनल। यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको भी इमोशनल फील हो रहा है या नहीं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट्स टाइम कि वो रिटायर हो जाए? जरूर बताइएगा अपनी जो है अपने इरादे और अपनी सोच और अपने थॉट्स। और यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट फीफा अगेन, क्योंकि फीफा में बहुत कुछ हो रहा है, इवेंटफुल है फीफा आजकल. और सबसे पहले ब्राजील ने कर लिए हैं अपने बैग्स पैक. जी हाँ, आपको पता चल ही गया है कि ब्राजील ने नॉर्वे के साथ जो मैच किया उसमें उनको शिकस्त मिली. एंड अदर कंट्री फुटबॉल इज फुटबॉल, बट फॉर ब्राजील पीपल, उनके लिए फुटबॉल इज नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ प्रेयर. वो पूजा है, प्रार्थना है उनकी. मतलब दे लव इट मच कि उन्होंने अपने झंडे में भी फुटबॉल रखा हुआ है. इमेजिन. तो जैसे मैंने कहा था कि जब उनकी फ्लाइट जा रही थी तो ब्राजील में उनकी फ्लाइट को बैप्टाइज किया गया था. या यू कैन इमेजिन द, यू नो वॉट, द आइकॉनिटी ऑफ दैट स्पोर्ट इन ब्राजील. सो द थिंग इज कि नेमार जूनियर ने, या अगेन नेमार जूनियर ने कर दी है अपनी रिटायरमेंट की डिक्लेरेशन. और या ही वॉज टियरफुल जब ब्राजील हारा जब नॉर्वे से, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि ये जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं अब इंटरनेशनल फुटबॉल से, और अब वो नहीं खेलेंगे इंटरनेशनल फुटबॉल में. लेकिन लेकिन यहाँ पर उनकी आंखों के जो आंसू थे वो बहुत कुछ बयां कर रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ब्राजीलियंस के लिए फुटबॉल कुछ अलग ही मायने रखता है. लेकिन अगर हम नेमार जूनियर की बात करें तो ही स्टिल इज, जी हाँ, ही स्टिल इज द मोस्ट ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर ऑफ ब्राजील. 80 गोल्स इन 130 अपेयरेंसेज, मतलब 130 अपेयरेंसेज हैं उनकी इंटरनेशनल फुटबॉल में, और उसमें उन्होंने 80 गोल्स दागे हैं. अगर ब्राज़ील की बात करें तो ये ब्राज़ील के ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर हैं. और ऐसे में जब ब्राज़ील इस फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, नेमार जूनियर ने भी अपने जाने का डिक्लेरेशन यहाँ पर कर दिया. क्या बात है. अगेन देर आर सो मेनी पीपल जो नेमार जूनियर को पसंद करते हैं, सो मेनी फैंस. मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ इट्स नॉट मेसी एंड रोनाल्डो, तीसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो नेमार जूनियर है. एंड या यहाँ पर उनका अलविदा भी लोगों को बहुत ही ज्यादा खलने वाला है, क्योंकि रोनाल्डो ने कहा कि ये फीफा वर्ल्ड कप उनका लास्ट फीफा वर्ल्ड कप है. यहाँ पर नेमार जूनियर ने भी कह दिया कि ये अब रिटायरमेंट ले रहे हैं. यू नो वॉट, दिस इज लाइक आई डोंट नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक एरा जो है वो खत्म हो रही है. नेमार जूनियर के केस में खत्म हो गई, रोनाल्डो ने कह दिया, ऑफ कोर्स वो भी खत्म हो जाएगी. मेसी का भी ये ऑलमोस्ट लास्ट वर्ल्ड कप है, ऑल्दो ही स्टिल इज किलिंग इट, बट स्टिल. एंड आई डोंट नो व्हाट आर वी गोना डू विदाउट देम. मतलब मुझे पता है कि वी स्टिल हैव एम्बापे और इन मेनी अदर गुड प्लेयर्स, बट रोनाल्डो, मेसी, नेमार जूनियर, दे आर द ट्रेंड, दे आर द लाइफ लाइन ऑफ फुटबॉल, एंड दे हैव बीन लाइक दैट फॉर सो लॉन्ग. सो आई डोंट नो व्हाट वी आर गोना डू विदाउट देम, आई डोंट नो. यहाँ पर एक और गाना, एक और बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: Fiji, Australia, New Zealand, Canada, and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone, and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed, and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ जन्मदिन है आज बाबा का, और बाबा का जन्मदिन अगर आपको नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी धुरंधर ऑफ द बॉलीवुड मिस्टर रणवीर सिंह। जी हाँ, बाबा बोलते हैं उनको पापराजी बहुत ही प्यार से, और उन्हीं का जन्मदिन है। सबसे पहले रणवीर जी हमारी तरफ जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ऐसी खुशियां बांटते रहें जैसे आप हो। आपकी ये वाइवेशियस सी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे, सब में अच्छाई देखते रहे, सबको फन करवाते रहिए जैसे आप करते हैं हमेशा, ऐसे ही बने रहे, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और मैं कहती हूं पैसे कमाते रहिए खतरनाक। और आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ये नहीं भी बोलते तो चलता, क्योंकि धुरंधर ने जितनी कमाई की है उसने बता दिया है कि रणवीर सिंह कैन लिटरली डू सो मेनी गुड गुड things and big things. So yeah, उनके करियर के लिए ये पिछला साल और ये साल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा है। जी हाँ, खासकर ये वाला साल धुरंधर ने सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं तोड़ दिए हैं, और उन्होंने भी सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। सो हम यही कहेंगे कि ऐसे ही आप रिकॉर्ड्स तोड़ते रहिए, अपने नए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहिए, अपनी जबरदस्त एक्टिंग से अपने फैंस को एकदम खुश करते रहिए, उनका दिल बहलाते रहिए। दैट्स अबाउट इट। उनका जन्मदिन है आज, तो ऑफकोर्स एक खूबसूरत सा गाना मैं उन्हीं का प्ले करने वाली हूँ अगेन, क्योंकि ऑफकोर्स उनका जो है वो जन्मदिन है आज. तो जो गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है आखिरी इश्क. आप लोग बोलोगे कि आखिरी इश्क क्यों, क्योंकि ये मेरा फेवरेट गाना है और इतनी सारी फरमाइशें मैं आप लोगों के लिए प्ले करती हूँ, ये मेरा भी तो बनता है. बस ये सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है बल्कि बहुत सारे लिसनर्स का भी फेवरेट है और ये काफी टाइम तक रहा है हमारी टॉप 10 हॉट 10 की लिस्ट में भी. सो आइए आखिरी इश्क आपको सुनाते हैं, जो कि जुबिन नौटियाल ने गाया है और ये धुरंधर द रिवेंज में एक ऐसे वक्त में आता है, एक ऐसे मोमेंट में आता है जो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे. तो सुनिए गाना और अगेन हैप्पी बर्थडे टू मिस्टर रणवीर सिंह.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। जी हाँ, प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारी गपशप हो रही है, गाने भी बेमिसाल चल रहे हैं। अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की ओर। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की खबरों से। सबसे पहले भारत की खबरों से शुरुआत करते हैं, जहां पर भारी बारिश से मुंबई पुणे एक्सप्रेस का एक हिस्सा धंसा, दोनों ओर से यातायात बंद। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार छठे दिन भी भारी बारिश हुई, इस वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा भूस्खलन की वजह से धंस गया। इससे मुंबई पुणे को बीच यातायात पर काफी असर पड़ा है। दोनों दिशाओं में यातायात अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने अगली सूचना तक मुंबई पुणे यात्रा से बचने की अपील की है। कर्जत और लोनावला के बीच घाट खंड में लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई डिवीजन की अप मेल लाइन पर ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल लूप कैबिन के बीच भूस्खलन हुआ है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई को पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिला कलेक्टर जितेंद्र दूड़ी ने बताया कि भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए एहतियात उपाय के तौर पर जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: ਭਾਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
4: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
3: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
5: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
6: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
5: ऐसा क्या खास है वहाँ?
6: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
5: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
6: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
8: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं ईरान की। जी हाँ, जहां पर बहुत ही बड़ी चीज जो है हुई है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ आयतुल्लाह अली खामनेई। जी हाँ, तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्में शुरू। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार तेहरान में हो रहा है। इन मीडिया आउटलेट्स ने समारोह में बड़ी तादाद में हिस्सा लेने वाले लोगों की तस्वीरें छापी हैं। इस खास इंतजाम के चलते तेहरान और कौम शहरों में खास ट्रैफिक इंतजामों का ऐलान किया गया है। रविवार को ईरान के नेता मुस्तफा खामेनेई अपने पिता और परिवार के कई सदस्यों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। हालांकि कुछ घंटों बाद ही उनके नाम से एक संदेश जारी किया गया, जिसमें गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई को एक बार फिर ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर पेश किया गया है। अमेरिकी और इसराइली हमलों में मारे गए अली खामेनेई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए जनाजे की नमाज रविवार को तेहरान के एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र इमाम खुमैनी मस्जिद में आयत जाफर सोभानी के नेतृत्व में अदा की गई। उनका अंतिम संस्कार आने वाले दिनों में ईरान और इराक में होगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि समारोह में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। पूरा कार्यक्रम इस तरह से है। 3-4 जुलाई तेहरान के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में इमाम खुमैनी मस्जिद में अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई हैं। 5-6 जुलाई में ताबूत को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है और 7 जुलाई को खामेनेई के पार्थिव शरीर को कौम ले जाया जाएगा। जनाजे की नमाज जमा करान में अदा की जाएगी। जी हाँ, जमकरान में। 8 जुलाई को शव को इराक के नजफ ले जाया जाएगा, जहां से इमाम अली दरगाह तक जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद कर्बला में अंतिम संस्कार किया जाएगा।

जी दोस्तों, और इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, बट नॉट द प्लेयर्स बल्कि गेम की। एग्जैक्टली गेम में क्या हो रहा है? वेल, सबसे बड़ा शेकअप तो यही है कि नॉर्वे ने हरा दिया है ब्राजील को। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हरा दिया है। अब स्पेन के साथ पोर्चुगल का मुकाबला होने वाला है और ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनी हुई है। क्यों? क्योंकि पीपल आर लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वहीं नॉर्वे के हैलेंड ने क्या कहा ब्राजील को हराने के बाद, आइए जरा वो भी बताते हैं आपको। सो फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील पर नॉर्वे की ऐतिहासिक जीत के बाद इसके स्टार खिलाड़ी एरलिंग हॉलैंड, बाय द वे ये उनका डेब्यू है फीफा वर्ल्ड कप में, एंड इस बंदे को देख के लगता है इसका ये डेब्यू है। मतलब ये बंदा इस हिसाब से काम कर रहा है कि नॉर्वे को खड़ा खड़ा यही जिता सकता है, लिटरली। मतलब क्या प्लेयर है, व्हाट अ प्लेयर, एंड यू नो व्हाट द चिल्ड एटीट्यूड ही हैज। मतलब आग लगी बस्ती में, हमको रहना है अपनी मस्ती में, वो वाली सिचुएशन है। नॉर्वे के बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो मशक्कत कर रहे होते हैं, यहाँ भाग रहे होते हैं, वहां भाग रहे होते हैं, दे आर लिटरली रनिंग फॉर देयर लाइफ्स इन सो मेनी मैचेस, बट दिस पर्सन इज लाइक ओके ठीक है करने दो जैसा जैसा करके, बाकी मैं गोल वोल दाग के जिता तो दूंगा ही। या दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो अच्छा, इन्होंने कहा क्या, आइए जरा आपको वो बताते हैं। जो हॉलैंड है उन्होंने कहा कि उनके देश के इतिहास के सबसे अविश्वसनीय दिनों में से वो एक है, बिकॉज इट्स अगेंस्ट ब्राजील। जी हाँ, उन्होंने इस जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल बताया। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को, 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन, ऐसे 1, 2, 3, 4 की बात नहीं हो रही है, 5 बार की। ब्राजील और फीफा, दे आर समथिंग जो दोनों एक दूसरे के साथ साथ जाते हैं। आप ही सोच लीजिए, 5 बार। तो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है, पहली बार। या आपने सही सुना, इस जीत के नायक हॉलैंड रहे, जिन्होंने मैच के 79th और 90th मिनट में गोल दागे। जी हाँ, ब्राजील की ओर से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने इंजरी टाइम में पेनल्टी पर किया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। एंड या नेमार जूनियर ने फिर उसके बाद क्या कहा अपनी आंसू भरी आंखों के साथ, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सो या आई डोंट नो, बट मैं जब जापान से ब्राजील हारी थी, जापान से ब्राजील जीती थी, तब आई वाज लाइक या आई रियली वांटेड ब्राजील टू विन। बट ठीक है, ब्राजील अब वो वाली फॉर्म में नहीं है जैसे वो पहले हुआ करता था। अगेन, वो 5 बार का चैंपियन वाली जो फॉर्म है वो इस बार नहीं थी, सो ऑफकोर्स ये होना लाजमी था। बट द थिंग इज कि ब्राजील की हार जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए अगेन एक यू नो एग्जाम्पल की तरह है। प्लस नॉर्वे की टीम जो कि लिटरली क्वार्टर फाइनल में कभी पहुंची नहीं, लेकिन अब पहुंच गई। सो नॉर्वे अच्छा खेल रहा है, और फ्रांस के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे खेल रहे हैं कि ओके ठीक है, अभी हम ही लेने वाले हैं ट्रॉफी, हमको नहीं चाहिए रिकॉर्ड, हमको और कुछ नहीं करना है, हमको ट्रॉफी चाहिए, दैट्स व्हाट दे आर गोइंग फॉर लिटरली। मतलब गोल्डन बूट, व्हाट गोल्डन बूट, या गोल्डन बूट, ये भी एक बड़ी फनी सी स्टोरी है, क्योंकि गोल्डन बूट जो है वो हॉलैंड को मिल सकते थे, लेकिन मेसी फिर से अभी भी स्कोर्स करने में लगे हुए हैं, गोल्स करने में लगे हुए हैं, सो वो गोल्डन बूट और इनकी जो है वो जो जर्नी है वो थोड़ी दूर है। इनफैक्ट जब लोगों ने बोला कि यू नो व्हाट हॉलैंड, अभी तुम गोल्डन बूट नहीं जीत पाओगे, मेसी इज स्टिल स्कोरिंग, जी हाँ, तो हॉलैंड वाज लाइक, उन्होंने स्टोरी डाली और उसमें लिखा हुआ था ट्रू, और आंखें बनाई हुई हैं बड़ी ही फनी सी। सो या ही इज डेफिनेटली अ डिसेंडेंट ऑफ वाइकिंग्स फॉर श्योर, बिकॉज लुक एट हिम द वे ही प्लेज, जस्ट लुक एट हिम। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा सीधा, बिल्कुल इधर उधर नहीं बल्कि सीधा ट्रंप के रोस्टिंग सेशन में। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि मिस्टर ट्रंप जो है वो हमें बहुत सारा कंटेंट देते हैं और हम उस कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, विच इज क्वाइट रिमार्केबल, क्योंकि उसका क्रेडिट हमें उन्हें देना पड़ेगा। बट द थिंग इज कि वो हरकतें इतनी उल्टी करते हैं कि क्रेडिट देने का मन नहीं करता, बल्कि एक से ना घुसा देने का मन करता है। देन यू विल बी लाइक, यू नो व्हाट निवेश शर्मा, आपको ऐसी वायलेंट बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप मीडिया में हो। वेल, कुछ लोग ऐसी बातें डिजर्व करते हैं, व्हाट कैन आई डू। चलिए इसी के साथ यहाँ पर ट्रंप की बात करते हैं। आप पता ही है कि 250वां यानी कि 250th इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई को उन्होंने सेलिब्रेट किया। 4 जुलाई को जो है वो 250 साल हो गए इंडिपेंडेंस मिले हुए, आजादी मिले हुए अमेरिका को, और इसी की सेलिब्रेशन। तो आपको तो पता ही है बहुत सारे लोगों ने ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया था इस सेलिब्रेशन में। यू नो, जो प्रोग्राम्स होते हैं स्टार्स ने परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, दिस स्टार्स आर, यू नो, दे आर सो हाई एंड माइटी, मतलब पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसे ही फालतू में एक्सपेंसिव बना देते हैं प्रोग्राम को। अच्छा है, खुद ही चले गए। या दैट्स व्हाट ही सेड, बिकॉज नोबडी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रोग्राम। जी हाँ, बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट नाउ। द थिंग इज कि यहाँ पर पूरी की पूरी सेलिब्रेशन हुई, वो सारी की सारी परेड हुई, सब कुछ हुआ, और जो फायरवर्क शो था वो अच्छा था, लेकिन यहाँ पर भी ट्रंप को अपना क्रेडिट तो लेना ही है। मतलब ये बंदा अपना क्रेडिट लेने के लिए किसी भी डिस्टेंस को कवर कर सकता है, मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि अब क्या किया। वेल, खुद की तारीफ करने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि अब यानी कि उनके जो है टेन्यो में सबसे खूबसूरत फायरवर्क शो जो है वो देखा है अमेरिकन लोगों ने, इससे पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं। मतलब इतने सारे प्रेसिडेंट्स आए बट उन्होंने कभी इतना खूबसूरत फायरवर्क शो दिखाई नहीं पाए। ये तो मेरी बदौलत है जो आपको इतना खूबसूरत फायरवर्क शो दिखाए, खुद ही तारीफ कर रहे थे, बेस्ट फायरवर्क शो एवर। और फिर साथ में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट DJT। आई डोंट नो, DJT का ना हमें कुछ और ही बना देना चाहिए। अब लेट मी थिंक अबाउट इट, लाइक आई कैन रियली थिंक अबाउट इट। जी हाँ, अच्छा एक और नई चीज की, जी हाँ, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो अभी एक मैच में अमेरिका के एक प्लेयर को, काफी फेमस प्लेयर को, मिला रेड कार्ड। अब आपको तो पता ही है, अगर आप फीफा देखते हो, अगर आप फुटबॉल देखते हो, कि रेड कार्ड जो है इट्स नॉट अ गुड थिंग। फिर जो है वो ऑफकोर्स उस प्लेयर को खेलने का मौका जो है वो नहीं मिलता अगले मैच में, और उनको रोका जा सकता है, उन पर जो है वो स्टे लगाया जा सकता है। सो ऐसे में अमेरिका के एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला और बेल्जियम के खिलाफ उनका मैच जो है वो होने वाला है अगला। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, फीफा के चेयरमैन को बोलते हैं कि यू नो व्हाट, वी आर सच अ गुड कंट्री, वी डू सो मच फॉर नाटो, वी डू सो मच फॉर दिस वर्ल्ड। मैं तो लिटरली एक बहुत ही, मतलब मैं तुम सबके लिए एक जिनी हूँ, मैं तुम सबके लिए एक गार्डियन एंजल हूँ। तो अगर तुम मेरी कंट्री के प्लेयर का रेड कार्ड कैंसिल कर दो तो कैसा रहेगा, मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया, राइट? यू कैन डू इट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, राइट? यू कैन डू इट, या एंड दैट्स व्हाट ही डिड। सो करप्शन जो है वो फीफा में भी पहुंच गया है। जी हाँ, मतलब अब आप लोग मतलब विश्वास नहीं कर सकते इस चीज पे। और करप्शन होता है एक जो पर्दे के पीछे होता है, भाई यहाँ तो पर्दे के आगे करप्शन हो रहा है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ओके, फीफा के चेयरपर्सन को कि मेरे प्लेयर का या मेरी कंट्री के प्लेयर का रेड कार्ड कैंसिल कर दो, और वो कर दिया गया, अब वो बेल्जियम के खिलाफ खेल रहा है। जी हाँ, सो दैट्स वॉट इज हैपनिंग। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी धौंस हर जगह दिखा रहे हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या होने वाला है इस इंसान का, आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इस उम्र के बाद लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज ही कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा भेजा और दिमाग हिल चुका है इस इंसान का। कुछ भी, एनीथिंग, मतलब द थिंग इज कि देर आर सो मेनी पीपल हु वॉन्ट्स टू डू समथिंग बट वो दे कांट बिकॉज देर आर सो मेनी मोरल ऑब्लिगेशंस और इतनी सारी चीजें होती हैं, बट दिस मैन इज डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जी हाँ, आप मुझे बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के

0: 5438 या मोबाइल 0415 952 660, 0415 952 660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आलू पूरी होती है, दही पूरी होती है, पानी पूरी होती है, लेकिन ये नींद ही पूरी नहीं होती, और इसमें कितनी ही सच्चाई है। मेरे साथ तो यही होता है, आप मुझे बताइए कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आपको उठना होता है आपको ऐसा लगता है अरे अभी तो मैं 2 घंटे और सो सकता था, मतलब ये क्या चल रहा है। अगर ये कंज्यूमरिज्म की दुनिया ने ये ट्रिक्स ना बिछाया होता तो हम लोग जितना चाहे उतना सो सकते थे, राइट? सो सही तो कहा है कि भाई पानी पूरी होती है, दही पूरी होती है, यू नो व्हाट, और आलू पूरी होती है, बट ये नींद ही पूरी नहीं होती कमबख्त। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, और आप भी बताइएगा आप में से किस किस को सोना बहुत पसंद है, नींद बहुत प्यारी है, बताइएगा जरूर। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि जबरदस्त है।

जी दोस्तों, इसी के साथ मैं कहती हूँ ना, इस दुनिया में बहुत सारे विचित्र लोग हैं। मतलब अगर अजूबा शब्द का इस्तेमाल उनके लिए किया जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना था कि एक रशियन कपल ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की एकदम टॉप पे जाके करतब दिखाया, एक बैनर दिखाया, और उसके बाद बंदे ने अपनी लेडी को प्रपोज भी कर दिया। मतलब उस प्रपोजल को आउटडन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब कोई भी उससे अच्छा प्रपोजल करना चाहता है तो उसे बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ जाएगी। और प्रपोजल्स लड़कियों के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग भी किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाइए और ऐसे ऐसे कुछ कीजिए, बट आई थिंक इसके अच्छा कुछ प्लान कीजिए इफ यू वॉन्ट टू प्रपोज समवन। नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस अगेन, क्योंकि वो कपल जो है वो पहली बार किसी ऐसी बिल्डिंग पर नहीं चढ़ा, वो चाइना में और बुर्ज खलीफा में और बहुत सारी और कंट्रीज की सबसे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स पर चढ़कर वहां पर नए करतब दिखाकर एक नए ही वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना चुके हैं। इस बार जो है वो बात थोड़ी ज्यादा जो है वो आ गई लाइमलाइट में, और यहां पर उनको फिर इस प्रपोजल के बाद, लेजेंडरी प्रपोजल के बाद, पुलिस पकड़ के भी लग गई। पहले ही जो रात थी उनकी एज अ फियांसे वो जेल में थी, बट कौन परवाह करता है, जब प्यार किया तो ऐसा प्रपोज नहीं किया तो क्या किया। जी हाँ, तो फिर भाई बात तो है, अब कर्म कर लिया था तो उसका जो है वो फल तो मिलना ही था, तो मिल गया, जेल पहुंच गए। लेकिन किसी ने उनकी बेल भी करवा दी, मतलब किसी ने उनके प्रपोजल को इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने, किसी सीक्रेट डोनर ने उनकी बेल भी करवा दी। जी हाँ, इमेजिन, आप खुद सोचिए। उसके बाद वो कपल आता है जेल से और बड़े ही अच्छे से एक दूसरे को किस करता है और वो कहता है, यू नो व्हाट, वी आर डूइंग ग्रेट, या वो हम दिख रहा था हमको कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा ठीक है, चलिए, ये सब तो हुआ। नेटफ्लिक्स पे उनके लिए एक मूवी भी बनी हुई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, ये सब तो हुआ। दे आर अ फेमस कपल एंड दे आर लाइक ऐसे स्टंट्स वो करते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे स्टंट देखकर कोई इंडियन इंसान कैसे पीछे ना रह जाए। जी हाँ, इंडिया में भी ऐसे अजूबे देखने को मिल गए। जी हाँ, उसमें से एक कपल वो तो खतरनाक अजूबा निकला। नाउ वो जो रशियन कपल था वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ा था। जी हाँ, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के खंभे पर ही चढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के टावर पर ही चढ़ गए। बताओ, वहां पर पुलिस उनको चढ़ रही है उसके ऊपर और उनको उतारने लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि रशियन कपल चढ़ सकता है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे, तो हम क्यों नहीं चढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टावर पे। उनको बोल रहे हैं नीचे से सब लोग, अरे तुमको लगेगा 440 वोल्ट का झटका, उतर आओ बरखुरदार, उतर आओ। पर वो कहां, प्यार परवान चढ़ रहा है और वो भी ऊपर चढ़ रहे हैं लिटरली, और उसी के साथ पुलिस लगी हुई है कि नहीं आ जाओ नीचे भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ यार, हमारी भी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। पर नहीं, वो कपल कह रहा है रशियन कैन डू इट, व्हाई कांट इंडियन। जी हां, and that's what happened. बड़ी मुश्किल से पुलिस वाले ऊपर गए, उनको लेकर आए नीचे, and फिर उनकी धुलाई हुई या नहीं वो किसी ने नहीं बताया, but the thing is कि धुलाई होनी जरूर चाहिए थी। मतलब यार, एक नॉर्मल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी टावर में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? ओनली इंडियंस कैन डू इट, आई एम टेलिंग यू, दे आर सो फनी। जब इसके बारे में पढ़ रही थी मैं लिटरली हंसते हंसते गिर गई। आई वाज लाइक, क्या क्या चल क्या रहा है, मतलब नॉर्मल बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी टावर, ऐसा झटका लगेगा वहीं की वहीं कपल गिरी निकल जाएगी। बट प्यार वालों को, प्यार करने वालों को कोई क्या समझाए, उनका दिमाग थोड़ी होता है, उनका तो मतलब कुछ और ही होता है। जी हाँ, सो यही है। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए, मेरी तरफ से नहीं, या बिल्कुल नहीं, आप सोच रहे होंगे कि यही बोलने वाली है निवेश शर्मा, मेरी तरफ से बिल्कुल भी मेरी तरफ से नहीं, एक फरमाइशी गीत है जिसे किया है फरमाइश हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर अमला जी ने। गाने का नाम है करीब आओ ना। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल आ जाते हैं भाई, बिल्कुल आ जाते हैं, आपने कहा हम कैसे नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत गजब की फरमाइशें करने के लिए। ये रहा आपका गाना, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, मैं क्या कहूँ, बहुत ही खूबसूरत चॉइस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे लिसनर्स की फरमाइशों में जो दम है वो दम तो कुकर में भी नहीं है, प्रेशर कुकर में भी नहीं है। जी हाँ, सो थैंक यू सो मच ये खूबसूरत फरमाइशों को हमसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, क्योंकि जब आप ये प्यारे प्यारे गाने यहाँ लेकर आते हैं जो हमने कभी कभी सुने भी नहीं होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ बिना देर किए आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। वेल, ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट शुरू हो गया है और आप लोग रेडी हो जाइए। अगेन, कैसे होना है आपको रेडी? अपनी फरमाइशों के साथ होना है भाई, ऐसे तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस फोन उठाना है, नंबर डायल करना है जो कि मैं आपको दे चुकी हूँ। गाना होना चाहिए पुराना। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ये है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट जो बहुत ही करीब है हमारे दिल के। और ये सेगमेंट में हम पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने किस्से, वो जज्बातें, वो सब होता है इसमें। सो यही हम करने वाले हैं और आप भी भागीदार बन जाइए इसमें अपने पुराने गाने की फरमाइश के साथ। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो आई थिंक इंस्पायर हो गया है, इंस्पिरेशन मुझे मिल गई है उसकी। मेरी जो अभी लिसनर ने ये फरमाइश की थी उसके बाद मुझे ना एकदम पूरी गजली सी फीलिंग आने लगी, एंड आई वाज लाइक ओके, लाइनअप में थोड़ा सा चेंजेस किए जाएं और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गजल मेरे दिमाग में चलनी शुरू हो गई, एंड आई वाज लाइक कि ओके, व्हाई नॉट प्ले दिस निविया, सो लेट्स प्ले इट। जी हाँ, अगर कुछ दिमाग में है और वो किया नहीं ऐसे कैसे, सो रफ्ता रफ्ता वो मिली आप सबके लिए।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: नवीं क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
4: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। तो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीवा के साथ। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर इस पूरी दुनिया में और खासकर दुनिया के अलावा अगर हम हिंदी फिल्म जगत की बात करें और वो भी पुरानी एरा की बात करें, तो वहां पर किशोरदा के किस्सों से ज्यादा मजेदार किस्से किसी के नहीं हो सकते। जी हाँ, क्योंकि उनके हरकतें इतनी फनी होती थी, इतनी मजेदार हरकतें करते थे, अपनी मनमानी करते थे, उनसे कोई भी कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता था। इनफैक्ट पॉलिटिकल फिगर्स भी वो नहीं करवा पाए जो कि बाकी क्या ही कर पा पाते। जी हाँ, तो एक गाना है बहुत ही फेमस किशोरदा का, ये जीवन है। आई नो आप सबको मुझे लगता है पता ही होगा, ये गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो गाना है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे बड़ा ही दिलचस्प किस्सा जो है वो हुआ था। और इस किस्से के बारे में अमित कुमार जी ने, जो कि किशोरदा के बेटे हैं, उन्होंने ही अपनी जुबानी इनफैक्ट ये किस्सा जो है सुनाया है। अमित कहते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के टाइम पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जो कि इसके कंपोजर थे, वो किशोरदा को गाना गाने के लिए बोलते हैं। किशोरदा गाना गाते हैं, यानी कि पिताजी गाना गाते हैं, जो कि कहा गया अमित जी के द्वारा कि पिताजी गाना गाते हैं और उस गाने को सुनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सुनते हैं उसे। और फिर जब किशोरदा रुकते हैं तो उनको बोलते हैं कि किशोरदा देखो बहुत ही अच्छा गा रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा अच्छा, आप एकदम शेर की तरह गा रहे हो, उसमें कोई भी जो है दोहराई नहीं है। क्योंकि किशोरदा उस गाने को एकदम पेट से गा रहे होते हैं, एकदम क्लियर वॉइस में, मतलब ऊंची वॉइस में गा रहे होते हैं। इस गाने जो है वो थोड़ी सी धीमी आवाज में, थोड़ा सा पकड़ के, गले को पकड़ के जो है इस गाने को गाना था। और यही चाह रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहते हैं कि देखो किशोरदा गाना बहुत जबरदस्त आप गा रहे हो, बस फील थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको फील जो है वो ऐसी नहीं लानी है, आपको एकदम बुलंद आवाज में से नहीं गाना है, थोड़ी सी थमी हुई सी आवाज में, धीमी सी आवाज में इसको गाना है। फिर क्या था, किशोरदा तो हमेशा कॉमेडी जो है अगर किसी चीज में नहीं करेंगे तो उनका तो लाइफ चल ही नहीं सकती थी। तो वो बड़े ही अच्छे से करते हैं, कहते कि अच्छा एग्जैक्टली कैसे करना है तुम मुझे बताओगे? तो लक्ष्मीकांत जी कहते हैं कि जैसे आपने अपने मुंह पर हाथ हुआ दोनों तरफ से और अपने गालों पर आपने हाथ, आप बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं और आप गा रहे हो, ये है सिचुएशन। तो किशोरदा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो किशोर दा बैठ जाते हैं, माइक कहीं और रह जाता है, वो बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथ अपने गालों पर ऐसे टिका लेते हैं और कुछ सोचने लगते हैं, जैसा कि इंसान कुछ ऐसा सोच रहा होता है जब उसने अपने दोनों गाल अपने दोनों हाथ अपने गालों के नीचे रखे होते हैं और पकड़ा होता है अपने गालों को ऐसे करके और सोच रहा होता है, वैसे वाली पोजिशन में वो बैठ जाते हैं और बड़े ही अच्छे से कहते हैं अपने असिस्टेंट, चलो ठीक है अब तुम माइक लाओ यहाँ पे। फिर वो गाना वो गाते हैं जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने उनको सिचुएशन समझाई थी, उन्होंने लिटरली वही सिचुएशन जो है वो क्रिएट की और फिर उस गाने को गाया और फिर कहते हैं लक्ष्मी जी को, यही कहा रहा था ना तुम, यही कह रहे थे ना तुम, यही करने के लिए कर दिया, सही है। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहते हैं कि ओनली किशोर दा कैन डू इट, अगर कोई और सितारा होता, कोई और सिंगर होता तो उस सिचुएशन को समझ के इस चीज को बिना किए, मतलब लिटरल उस सिचुएशन को बिना किए कुछ करने की कोशिश कर, किशोर दा ने वो कर ही दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तो ऐसे ही कह दिया था कि जैसे हाथ गालों के नीचे दोनों हाथ रखे हुए हैं, सोच रहे हैं और उस गाने को आप गा रहे हो, क्योंकि गाना ही कुछ ऐसा है, ये जीवन है जी हाँ। तो किशोर दा ने सच में ही वैसा कर दिया, पूरा का पूरा स्टूडियो वहां पर हंसने लग पड़ा, जितने भी लोग थे वहां पर रिकॉर्डिस्ट और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले वहां पर आर्टिस्ट, सब के सब जोर से हंसने लग पड़े कि लक्ष्मीकांत जी ने तो ऐसे ही बोला था, किशोर दा ने कर भी दिया वैसा ही, बताओ। इतने सीरियस गाने को गाते गाते भी किशोर दा वहां पे कॉमेडी करके निकल लिए। यहाँ पर यही गाना आप सबके लिए।

भाई बात तो सही है, किशोरदा जो यहाँ पर कह रहे हैं वो सही है, और इस गाने को गाने का अंदाज यही ठीक था, किशोरदा ने जैसे गाया वैसे ही ठीक था। लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, जो वाइवेशियस एनर्जी जो किशोरदा क्रिएट किया करते थे। यू नो व्हाट, किशोरदा के साथ मैं किसी को कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज रणवीर सिंह का जन्मदिन है। कभी अगर आपने रणवीर सिंह को एक्ट करते हुए देखा है और आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, ही इज सच अ फन पर्सन। मतलब मजे चल रहे हैं, प्रैंक चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं, मतलब ऑफकोर्स ही कैन मैच द ह्यूमर ऑफ किशोरदा। और वो जो एकदम पूरी खतरनाक एक्सटेंट तक चले जाते थे किशोरदा, बट कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज अच्छी लगती है कि जो स्टार्स मतलब हमें पर्दे पर तो एंटरटेन करते ही हैं, लेकिन बैक स्टेज भी, बिहाइंड द सीन्स भी, वो अपने क्रू मेंबर्स को और अपने आजू बाजू वाले लोगों को इतना एंटरटेन करते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता एक अच्छे कलीग के साथ काम करना, राइट? किशोरदा के बारे में हमेशा सबने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, बहुत ही अच्छी बातें, फिर चाहे वो आशा जी हों, फिर चाहे लता जी हों, मतलब जिसने भी उनके साथ काम किया, उन्होंने एक ही चीज कही है कि क्या कमाल इंसान था। मतलब खतरनाक तो ये थे, इतना ज्यादा हंसा देते थे सामने वाले को, अगर किसी और के साथ ड्यूएट होता था इनका तो सामने वाले आर्टिस्ट को इतना ज्यादा हंसा देते थे कि वो अच्छा गा ही नहीं पाता, मतलब उनका गला जो है वो बैठ जाता था हंस के। और फिर जब उनको बोलते थे कि अरे किशोरदा आप हमें इतना हंसाते क्यों हो, तो किशोरदा सामने से बोलते थे यही तो चाहता हूं मैं, ऐसे तो तुम मेरे से अच्छा गाना नहीं गा पाओगे और मैं अच्छा गाना गाऊंगा, तो मेरी साजिश है और तुम सब इस साजिश का शिकार हो जाते हो। लेकिन फिर भी किशोरदा को सब प्यार करते थे, आज भी करते हैं। उनकी वो चहचहाहट, उनकी वो ह्यूमर और उनकी वो बातें, सबका सब और हरकतें शुड बी द हाईलाइट आई वुड से, सब कुछ बहुत ज्यादा मेमोरेबल है। जी हाँ, यहाँ पर अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। लेकिन आपको क्या करना है, मजे करने, हेल्दी रहना, हैप्पी रहना, मुस्कुराते रहना, गाते रहना, खाते रहना है, और अपनी आरजे निविया को याद करते रहना है। इतना टाइम नहीं लगता है मुझे याद करने में, थोड़ा सा भी कर लोगे तो चल जाएगा, हिचकी आ जानी चाहिए मुझे बस, ठीक है, इतना चलेगा। बाय बाय, सी यू टाटा। ये लास्ट सॉन्ग अगेन एक फरमाइशी गीत मेरी बहुत ही खास लिस्टनर की तरफ से, गाने का नाम है प्रीत न जाने रीत, लता जी का गाया हुआ ये खूबसूरत सा गाना। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी फरमाइश के लिए, बाय, सी यू टाटा। और डेफिनेटली ये जो फरमाइशें होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यू नो मेरे दिल के करीब है, सो इनको ऐसे ही जारी रखिए। एंड या दैट्स अबाउट इट, बाय, सी यू टाटा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं।
1: यार नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर कुकिंग ऑयल से उड़ेगा हवाई जहाज। जी हाँ, ब्रिस्बेन एयरपोर्ट ऑस्ट्रेलिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल से बने ईंधन का इस्तेमाल हवाई जहाजों में किया जाएगा। मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव और तेल सप्लाई में रुकावट को देखते हुए इस $5 मिलियन के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। वहीं ब्रिस्बेन में $159 मिलियन की बड़ी प्रॉपर्टी डील। ब्रिस्बेन के बिजनेस हब में एक बड़ी कमर्शियल डील हुई है। क्रॉमवेल प्रॉपर्टी ग्रुप ने एक एशिया पैसिफिक इन्वेस्टर के साथ मिलकर ब्रिस्बेन के 100 क्रीक स्ट्रीट स्थित एक मशहूर ऑफिस एसेट को करीब $159 मिलियन में खरीदा है। इसी के साथ ब्रिस्बेन में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ब्रिस्बेन में रहने वाले भारतीय समुदाय में भारी उत्साह है। मेलबर्न के साथ साथ ब्रिस्बेन में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ब्रिस्बेन के मौसम का हाल। ब्रिस्बेन और इसके आसपास के इलाकों में आज मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने शाम तक हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान भी जताया था। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर नई मुहिम। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने शहर में ट्रैफिक कम करने के लिए आज से एक नया अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत पीक आवर्स में लोगों को अपनी गाड़ियों की जगह ट्रेनों और बसों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं क्वींसलैंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट। ब्रिस्बेन समेत पूरे क्वींसलैंड राज्य में न्यू साउथ वेल्स में पाए गए वाइल्ड बर्ड्स में H5N1 बर्ड फ्लू स्ट्रेन की पुष्टि के बाद अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिस्बेन के पोल्ट्री उत्पादों को अपने फार्मर्स से में एहतियात बरतने और साफ सफाई का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई और महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। मुंबई, पुणे और इसके आसपास के इलाकों में कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई पुणे रेल रूट पर लैंडस्लाइड हुआ है जिससे 16 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। इसी के साथ पीएम मोदी का 3 देशों का दौरा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अपनी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दिल्ली से निकलते हुए पीएम ने कहा कि ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगा। वहीं मुंबई में चाल हादसा, 13 लोगों की जान गई। जी हां, कल रात मुंबई के मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच एक 3 मंजिला चौल गिर गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री ने आज असेंबली में बताया कि पिछले 3 से 4 दिनों में राज्य में भारी बारिश से जुड़े हादसों में कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड, रास्ते बंद। पहाड़ों पर भी मॉनसून का भयानक रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और कुल्लू जिलों में बीती रात हुई तेज बारिश के बाद फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। चंबा तिस्सा रोड और लार्जी सेंज रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। वहीं ईशान किशन बने नंबर 1 T20 बल्लेबाज। जी हां, ICC की ताजा रैंकिंग्स में भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर आई है। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं इसी के साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले तेहरान में अली खामनेही का अंतिम संस्कार। ईरान की राजधानी तेहरान में देश के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामनेही के लिए एक विशाल सामूहिक शोक सभा अंतिम संस्कार की प्रार्थना आयोजित की गई। वहीं सूडान में हैजा का प्रकोप, कई मौतें। अफ्रीकी देश सूडान के पश्चिमी कोर्डफोन राज्य से एक बेहद चिंताजनक खबर है। वहां बीते दो हफ्तों में हैजा यानी कि कॉलरा फैलने की वजह से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। वहीं दक्षिण कोरिया लॉन्च करेगा नया सैटेलाइट। जी हाँ, दक्षिण कोरिया कल यानी मंगलवार को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अपना चौथा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह लॉन्चिंग कैलिफोर्निया के बेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से होगी। वहीं गाजा और लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन। मध्य पूर्व से मिल रही खबरों के मुताबिक गाजा सिटी और दक्षिणी लेबनान में चल रहे सीज फायर समझौते के बीच फिर से हवाई और ड्रोन हमले हुए हैं। इसके साथ यूक्रेन सीमा पर रूस ने बनाया बफर जोन। जी हाँ, क्रेमलिन रूस के राष्ट्रपति भवन ने आज बयान जारी कर कहा है कि रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर एक सुरक्षित बफर जोन तैयार कर लिया है। इसका मकसद यूक्रेन की तरफ से होने वाले हमलों को रोकना है। वहीं फ्रांस और ग्रीस के जंगलों में भयानक आग। यूरोप इस समय भीषण गर्मी और जंगलों की आग से जूझ रहा है। दक्षिणी फ्रांस में तेज हवाओं और चिलचिलाती गर्मी के बीच सैकड़ों थेसोलोनिक शहर फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं। वहीं ग्रीस के थेसोलोनिकी शहर के पास जंगलों की आग एक इंडस्ट्रियल एरिया तक फैल गई है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप, नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर किया बड़ा उलटफेर। जी हां, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। वहीं नेमार ने लिया इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास। ब्राजील की इस हैरान करने वाली हार के तुरंत बाद उनके दिग्गज खिलाड़ी नेमार ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। भावुक होते हुए नेमार ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अब ये सफर यहीं खत्म होता है। वहीं इंग्लैंड ने मेक्सिको को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। एक और हाई वोल्टेज राउंड ऑफ 16 मैच में इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से मात दे दी है। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में खेला गया ये मैच काफी आक्रामक रहा। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ऐलान, ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप। पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने स्पेन के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि ये उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जीता 7वां महिला T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट के मैदान से खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं गोल्डन बूट की रेस में हॉलैंड और मेसी के बीच टक्कर। फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में फ्रांस के किलियन एम्बापे 7 गोल और 2 असिस्ट के साथ सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन ब्राजील के खिलाफ 2 गोल दाग कर एर्लिंग हॉलैंड अब लियोनेल मेसी के बराबर आ गए हैं। हॉलैंड और मेसी दोनों के नाम अब 7-7 गोल दर्ज हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
2: रेडियो ब्रिस्वानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुई।
3: ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੁਐਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
4: ਪ੍ਰਿਯਾ, ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮਮਾ ਕਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋ ਉਨਕੋ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੇ ਥਰੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਨੀ ਭੇਜ ਦੋ ਜਿਸਸੇ ਵੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲੇਂਗੇ।
5: ਯੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਕਾ।
6: ਅੱਛਾ, ਵੋ ਕਿਆ?
5: ਅਬ ਤੁਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯਾ ਫਿਜੀ ਮੇ ਵੀ ਮਨੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੋ ਲੋਟਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈਲਪ ਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇ।
7: ਲੇਕਿਨ ਮਮਾ ਕੇ ਲਈ ਮਨੀ ਲੈਣੇ ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ।
5: ਅਰੇ, ਰਿਸੀਵਰਸ ਅਬ ਕੈਸ਼ ਪਿਕਅਪ, ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਯਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਟ ਮੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮਨੀ।
8: ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਜੀਏ ਲੋਟਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਨਲਾਈਨ au.lotusfx.com ਐਪ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।
9: ਵੀਰੇ, ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
10: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
9: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
10: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
9: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
11: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a...
12: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association, QFFA. From 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane. With 32 teams already confirmed, participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family. Live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar. Connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
13: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ਹੈਰਤਮੰਦ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।
2: ਹਨੀ ਇਹ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दो।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan
10: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पी हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.01 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दे टॉप

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती
4: अनुज,
3: है।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सरोवरे ते चार छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए लव स्टोरीज दी रहंदी दुनिया तक जदों जदों गल होगी जदों जदों गल होगी ना के कहा जाऊगा कि लव स्टोरी बहुत सोहनी है कि उदों उहदा नाम कबीर सिंह दा नाम वे अजिहा नहीं हो सकना क्योंकि कबीर सिंह बहुत ही शानदार बहुत ही ज्यादा सोहनी फिल्म हैगी है। ते रणबीर सिंह रणबीर नहीं नहीं नहीं नहीं शाहिद शाहिद कपूर दी बेस्ट मूवीज दे विचों एक है कबीर सिंह। ता शाहिद कपूर दी रोमांटिक ड्रामा हैगी है जिहड़ी कबीर सिंह इसने दुनिया भर दे विच बहुत शानदार कमाई कीती सी 377 करोड़ तो पार की कमाई की सी। इस मूवी का निर्देशन संदीप रेडीवांगा ने किया जो हूं दोबारा तो नाल नजर आ रहे हैं रोमियो शाहिद कपूर के शाहिद कपूर की रोमियो डायरेक्ट भी संदीप रेडीवांगा ने ही किया। दोनों जदों इकट्ठे होंगे ने तो मूवी हिट होने की गारंटी खैर हो जाती है।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी वन सन ओवन ते जी आरजे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक मूवी आई सी ना रोबोट वाली, रजनीकांत थी, याद आया ना, ऐश्वर्या राय दे नाल बहुत ज्यादा सोहनी सी। उस तो बाद उसका सैकेंड पार्ट भी आया सी, उसनू इना प्यार नहीं मिल सकिया सी। पर रोबोट वालियां फिल्मां हुंदियां ने जिहड़ियां उह कमाल कर जाणो तां कमाल दी गल हुंदी ने, जिवें रजनीकांत कमाल कर गए सी, उवें शाहिद कपूर भी कमाल कर गए सी। तेरी बातों में उलझा जी याद विच बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म है। इस दे विच रोबोट शाहिद कपूर ने ही कृति सैनन बनी सी, ते इन्नी ज्यादा सोहनी रोमेंटिक कॉमेडी सीगी, जिसका म्यूजिक भी शानदार, डांस स्टेप्स हले तक वायरल, म्यूजिक भी शानदार, डायलॉग भी शानदार, एक्टर्स भी शानदार, कहानी भी शानदार, ताही ता इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 150 करोड़ की कमाई की सी। वधिया फिल्मों के विच गिनी जाती है।

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसौनी वन सन वारे ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। एक बड़े साल पहला मूवी आई सी जिस विच बहुत सारे कलाकार सी, शाहिद तां सीगे सीगे, शाहिद दी गल कर रहे आपा, शाहिद दे नाल नाल आलिया भट्ट भी सी, दिलजीत दोसांझ भी सी, करीना कपूर भी सी। बिल्कुल सही तुसीं गैस कीता। गल कर रही हां मैं फिल्म उड़ता पंजाब दी। उड़ता पंजाब दे विच ना शाहिद कपूर दा किरदार हैगा जिहड़ा ओह टोटली डिफरेंट सी। ड्रग एडिक्ट एक नौजवान बनिया सीगा ओह, ते बने सी बड़ा वधिया एक्टिंग कीती सी, नो डाउट बहुत ज्यादा सोहणी एक्टिंग। इस दे विच चारा ही किरदारां ने बहुत सोहणी कीती सी, ते स्टोरी भी इसकी लाजवाब हैगी है। ताही ता ये उड़ता पंजाब हैगी है जिहड़ी ओ 100 करोड़ दे नेड़ तक दे कलैक्शन दे विच पहुंच गई सी। कई साल पहला दी गल कर रही हां मैं, तकरीबन एक दहाका हो गया हैगा। इस फिल्म विच शाहिद ने तेजिंदर सिंह उर्फ गबरू दा किरदार निभाया सीगा।

0: वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम ते जी आर जे संदेश अलग दे नाल सी बने होए। हुण एक फिल्म आई सीगी कश्मीर दी, बहुत ज्यादा सोहनी फिल्म, उस दे विच भी शाहिद कपूर छा गए सी, हालांकि नाल उस दे विच तब्बू सी, तब्बू ने भी बहुत ज्यादा वधिया रोल किया सी। तब्बू दी भी हुण तक इस फिल्म दे विच तारीफ हुंदी हैगी है। गल कर रही हां मैं हैदर दी जी। हां, उड़ता पंजाब तो बाद ना शाहिद कपूर दी हैदर 6वें स्थान ते रही। इस मूवी विच शाहिद दे नाल तब्बू अते के मैनन लीड रोल दे विच है कि इस फिल्म ने दुनिया भर दे विच बॉक्स ऑफिस ते 100 करोड़ दे नेड़ तेड़, नहीं 80 करोड़ दे नेड़ तेड़ दी कमाई कीती सी, ते इस नू बेस्ट फिल्मा दे विच मैं तां कंसीडर करूंगी क्योंकि स्टोरी बहुत ज्यादा सोहनी है।
1: ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो

0: रेडियो ब्रिस्बानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पी हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 1 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

चीजें खत्म हो जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और जीवन जीवन चलता रहता है। नमस्कार, आदाब, खैर मकदम, सत श्री अकाल श्रोताओं। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर इसी बदलते जीवन के साथ एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है। रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे और आपके सुबह के खास सफर जीवन आधार में। जीवन में बहुत कुछ बदलता है, कुछ आता है, कुछ छूटता है, लेकिन ये जीवन, इसकी कहानी यूं ही मनुष्य की आखिरी सांस तक चलती रहती है और यही है जीवन का आधार। आइए आज इसी जीवन के आधार को समेटते हैं एक बार फिर से हमारे सफर जीवन आधार में रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

श्रोताओं, लोगों को लगता है कि अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा या जो सामने लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है। अगर आपके सामने भी कोई ज्यादा बोल रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास वाकई बहुत नॉलेज है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ज्ञानी है, उसके पास बहुत ज्ञान है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सही मायनों में जो ज्ञानी है ना, वो उतना ही बोलता है जितना जरूरी है, कम बोलता है, शांत रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेम से बोलता है। ईगो नहीं होता उसमें, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ज्ञान है, सही ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का धनी है, अहंकार का नहीं। आइए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं जीवन आधार में एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

सुबह का ये खास और बेहतरीन सफर जो आपको जिंदगी से जोड़ता है, सच्चाई से जोड़ता है, उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर से जोड़ता है और इस सफर का नाम है जीवन आधार। इसी सफर में आज आप सताक्षी के साथ एक बार फिर से हैं श्रोताओं, और इसी सफर में हम आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए मेरे साथ जीवन आधार और रहिए रेडियो प्रसवानी आरोप।

गौतम बुद्ध की यूं तो कई बातें या उनके कई थॉट्स मशहूर हैं, बहुत फेमस हैं, लेकिन मुझे गौतम बुद्ध की कही बात, एक बात जो है वो हमेशा मैं अपने दिल में रखती हूँ और मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि क्रोध के समय मौन और समस्या के समय मुस्कान, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर आप इस बात को मेरी तरह अपने मन में रख लें, संभाल के गांठ बांध के जहन में बैठा लें, तो यकीनन आप जिंदगी पर विजय हासिल कर सकते हैं। क्रोध जो है सबसे ज्यादा आपके रिश्ते खराब करता है, आपके अंदर कई सारी बीमारियों को जन्म देता है, आपकी अपनी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर देता है। और अगर आप उसके समय शांत रहना सीख जाते हैं, आप मौन रहना सीख जाते हैं, आप अननेसेसरी बोलते नहीं हैं, तो आप कई रिश्तों को बचा लेते हैं, अपने मन की शांति को बचा लेते हैं। और कठिन समय जीवन में आना ही आना है, मनुष्य की नियति है कि कठिन समय से भी उसके जीवन को गुजरना है जैसे उसके जीवन खुशियों से गुजरता है। उस समय मुस्कान चेहरे पर बनाए रखना, वो प्यार बनाए रखना और हिम्मत बनाए रखना, यही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत के नाम सुनूंगी और सुनवाऊंगी आपको भी अगला गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

ये सफर जिसमें आप खुद को ढूंढ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि जीवन कितना खूबसूरत है और इसे कितनी खूबसूरती से हम बिता सकते हैं, इसी जीवन को समझने का नाम है जीवन आधार। और इसी जीवन आधार पर हम और आप आज एक बार फिर से साथ चल रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इस एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

अगर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, और अगर आप इसका समाधान नहीं कर सकते तो चिंता करने से क्या फायदा है। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन आधार। प्रॉब्लम जब जिंदगी में आती है तो फिक्र तो होती है ना। हमको आपको इसी बात की फिक्र है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम जब इस दुनिया में हमारी जिंदगी में आती है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में परेशानी होती है और आप फिर चिंता करते हैं। लेकिन देखा जाए तो किसी भी प्रॉब्लम के सिर्फ दो ही फेजेस होते हैं, या तो उसका सॉल्यूशन है और या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर उसका सॉल्यूशन है तो उसको खोजिए, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, तो फिर भला चिंता का फायदा क्या है। सोचने वाली बात है। सोचिए और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

तो श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन से जुड़ा हमारा खास सफर जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, और एक और जिंदगी से जुड़े ऐसे ही खास सफर के साथ कल फिर से जीवन आधार में आपसे सुबह सुबह होगी मुलाकात। आज के सफर से अब लूंगी विदा। नमस्कार।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल जी। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी। आज है ट्यूसडे यानी कि मॉर्निंग का टाइम है और उम्मीद है कि आपका ये दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू हो। जी हाँ, अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होने के लिए जी एक कप चाय या फिर कॉफी तो बनती है। जी बिल्कुल, एक कप चाय या फिर कॉफी के साथ अगले एक घंटे तक हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया की लेटेस्ट न्यूज, वेदर अपडेट, ट्रैफिक टिप्स, एंटरटेनमेंट बुल्स, हेल्थ टिप, थॉट ऑफ द डे और बेहतरीन बातें और जी म्यूजिक तो होगा ही। तो आप सभी बस मेरे साथ बने रहिए, रेडियो ब्रिस्बानी में जाइएगा कहीं भी मत, क्योंकि बहुत सारी बातें आपके बीच लेकर आई है आपके दोस्त आरजे जानी जैन जानी के सफर प्रोग्राम में, और ये सफर बहुत ही खुशनुमा बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बानी।

0: वेलकम बैक जी आप सभी का रेडियो ब्रिजवानी में। आप सभी सुनकर आए हैं ये प्यारा सा गीत, इसी के साथ आइए कुछ टॉप न्यूज हेडलाइंस जान लेते हैं। ब्रिस्बेन में आज का जो मौसम है ज्यादातर सनी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की ठंडी हवा जरूर चलेगी और विंटर मॉर्निंग का मजा तो बना ही रहेगा। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में वेदर डिपार्टमेंट ने ईस्ट कोस्ट के कुछ हिस्सों के लिए शावर्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बताई है, जबकि क्वींसलैंड के कई एरियाज में मौसम स्टेबल रहेगा। वहीं पर क्वींसलैंड में यूथ क्राइम को लेकर नई बेल लॉस पर भी चर्चा जारी है। वहीं पर ब्रिस्बेन के बाउन हिल्स एरिया में 2032 ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए नए होटल प्रोजेक्ट की प्लानिंग जो है वो सामने आई है। जानेंगे थोड़ी देर बाद और भी बहुत सारी बातें, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्बेन में।
1: कुछ तो कहो

हां जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेनी में। तो आज ब्रिस्बेन का दिन जो कंफर्टेबल है वो रहने ही वाला है। मॉर्निंग कूल रहेगी और दिन में सनशाइन देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप ऑफिस या स्कूल जा रहे हैं तो हल्का सा जैकेट साथ जरूर रखिए। वहीं पर दोस्तों, विचार की तो बात बनती है, हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। स्माइल के साथ शुरू कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ खत्म कीजिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल ना हमें कभी भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है तो हम वीक फील करते हैं और फिर कुछ काम नहीं होता, क्योंकि जब खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जी काम कैसे होगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे नेक्स्ट सॉन्ग ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेनी। जाइएगा कहीं मत, क्योंकि आपके साथ है आपके दोस्त आरजे जॉनी जैन। बहुत सारी बातें हैं, कहीं मत जाइएगा। आइए सुनते हैं ये गीत।

हां जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं पर दोस्तों बॉलीवुड की बात करिए तो बॉलीवुड और ऑस्ट्रेलियन एंटरटेनमेंट दोनों जगह ना नए प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक रिलीजेस की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आज का प्लेलिस्ट आपको जरूर पसंद आएगा। वहीं पर दोस्तों सुबह उठकर एक ग्लास जरूर पानी पीजिए, हमेशा कहती हूँ जी, पानी पीना ना बहुत जरूरी है। 10-15 मिनट वॉक या फिर स्ट्रेचिंग आपके दिन को एनर्जेटिक बना सकती है। जब हम ये करते हैं हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है, हम अच्छा फील करते हैं। जब हम फ्रेश एयर लेते हैं ना तो हमारा दिमाग जो है काफी एक्टिव हो जाता है और अच्छे थॉट्स, अच्छी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती है। वहीं पे दोस्तों पीक ऑफिस आवर्स शुरू होने वाले हैं, ड्राइव सेफ कीजिएगा, सेफली ड्राइव करके स्पीड लिमिट को जरूर फॉलो करें और सीट बेल्ट लगाना ना भूलिएगा। इसी के साथ आइए, मैं नहीं भूलूंगी आपको ये गीत सुनाना, सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मानी।

हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया की अपडेट तो बनती है। ऑस्ट्रेलिया अपने पैसिफिक पार्टनर्स के साथ रीजनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। जी हाँ, इसी के साथ ही थोड़ा हंसी मजाक भी होना जरूरी है। क्या आप जानते हैं ब्रिस्बेन को ऑस्ट्रेलिया के सबसे सनिएस्ट और आउटडोर लाइफस्टाइल वाले सिटीज में से एक माना जाता है? जी हाँ, तो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों। चलिए, आज का सवाल आपके लिए, आपकी परफेक्ट मॉर्निंग चाय के साथ होती है या फिर कॉफी के साथ? मुझे ज्यादातर आंसर कॉफी का पता है क्योंकि मैं भी कॉफी लवर हूँ। वैसे चाय लवर तो हूँ ही, अरे मुझे कुछ भी पिला दो बस पीने के लिए चाहिए चाय या कॉफी। लेकिन आप जरूर बताइए, परफेक्ट मॉर्निंग चाय के साथ होती है या कॉफी के साथ? इसी के साथ अब तक के लिए मैं सुनाती हूँ ये गीत ऑन योर रेडियो प्रेस वाणी।

वेलकम बैक एट योर रेडियो ब्रिस्वानी में आप सभी का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, खुश रहना ना एक चॉइस है और हर सुबह उस चॉइस को दोबारा चुनने का मौका देती है, तो इसीलिए खुश जरूर रहिएगा। वहीं पे दोस्तों, आप सभी को जरूर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना जरूर चाहूंगी कि जिस तरह से मौसम क्लाइमेट बदल रहा है, कभी सन कभी ठंडी कभी रेनी, है ना, बहुत सी ऐसी चीजें होती है, तो इसमें हेल्थ का जरूर ध्यान रखेगा क्योंकि ऐसी ही चीजें जो है हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। समय समय पर जरूर एकदम से ना, जैसे थोड़ा सा गर्मी महसूस होने लगे तो एकदम से आप जैकेट या फिर अपना स्वेटर ना उतारें क्योंकि इससे गर्म सर्द हो जाता है और ठंडी जो है जल्दी पकड़ आ जाती है। तो इसीलिए अपना ध्यान जरूर रखिए, समय समय पर अगर थोड़ा सा भी फील हो तो डॉक्टर को जरूर चेक करवाए, मेडिसिन लेते रहिए, गर्म पानी जरूर पिए क्योंकि इससे ना मोस्टली जो हमारी इंटरनल चीज होती है ना, जैसे कभी कभी जुखाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो वो ये गर्म पानी से ही काफी हद तक ठीक हो जाता है। गार्गल्स करते रहें, अपना ध्यान जरूर रखें। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, वेलकम बैक है जी। इस गीत के बाद एक बार बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। इसी के साथ दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम मॉर्निंग शो जानी का सफर समाप्त होने का वक्त हो चुका है। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन, आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिये, सेफ ड्राइव कीजिए और मुस्कुराते रहिए। हैव अ वंडरफुल डे ब्रिस्बेन, और साथ ही साथ अपना ख्याल जरूर रखना। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो जानी आप सभी का भी ख्याल रख पाएगी ना। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

नमस्कार मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। F-16 और सुखोई 30 ने इंडोनेशिया में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान का स्वागत। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं और इसके साथ ही उनकी तीन देशों की यात्रा की शुरुआत हुई। जकार्ता में उनके आगमन पर औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने हवाई अड्डे पर एक खास पहल के तहत उनका स्वागत किया। चिनफिंग ने 101 सैन्य अधिकारियों को हटाया, दो वफादारों को सौंपी सेना की कमान। चीनी सेना इन दिनों बड़े बदलाव से गुजर रही है। चार साल से सेना में हो रही बड़ी छटनी के बाद अब राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टॉप कमांडरों को भरने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में चिनफिंग ने अपने दो करीबी वफादारों झांग शुंगवांग और वांग गैंग को जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। चिनफिंग ने दो नई नियुक्ति से संकेत दिया है कि वो टॉप सैन्य कमान को अपने हिसाब से खड़ा करना चाहते हैं। श्रीलंका के जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 25 की मौत, 100 घायल। श्रीलंका से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ निगोम्बो शहर स्थित एक जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच भीषण हिंसक झड़प हो गई। इस खूनी संघर्ष में जेल के चार सुरक्षा कर्मियों समेत 25 कैदियों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, श्रीलंका की जेल में हुए इस भीषण झड़प को पिछले 5 सालों का सबसे घातक जेल दंगा बताया जा रहा है। ये घटना राजधानी कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो शहर की मुख्य जेल में हुई। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत में लॉन्च नहीं होगा व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर। फोन नंबर साझा किए बिना चैट की सुविधा प्रदान करने वाले विवादित यूजर नेम फीचर पर मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप को अपना जवाब देने के लिए और समय दे दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार को आश्वस्त किया है कि जब तक इस मामले पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं करेगा। 100 दिनों में बनी स्वदेशी युग्राम राइफल ने

पास किए सभी टेस्ट, सीएपीएफ में शामिल करने की तैयारी। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना के स्टार्टअप द्वीप डिफेंस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल तेलंगाना स्थित स्टार्टअप द्वीप डिफेंस द्वारा विकसित यूग्राम युद्ध राइफल ने सेना और गृह मंत्रालय के सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। सिर्फ यूपीआई ही नहीं, भारत के डिजिटल ब्लूप्रिंट पर भी इंडोनेशिया की नजर। इंडोनेशिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को अपनाने और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बनने जा रहा है। फ्रांस, सिंगापुर और यूएई जैसे कई देशों ने मुख्य रूप से भारतीय यात्रियों और व्यवसायियों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान बनाने के लिए यूपीआई को अपनाया है, लेकिन इंडोनेशिया के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने खुद के सॉवरेन डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर करना चाहता है। यूपीआई को जोड़ने के अलावा उसका मकसद कॉमर्स, डिजिटल पहचान और पब्लिक सर्विस के लिए ऐसे इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म बनाना है जिन्हें बाद में आसियान क्षेत्र में एक्सपोर्ट किया जा सके। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हो।
1: Radio Vrishvani 1701 Brisbane.

0: ओके चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्यों नहीं एक दो एड हो जाए, एड का समय है और फिर हम वापस आते हैं, ठीक है? दोस्तों चलो सुनते हैं एड को और
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेंबर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
4: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
0: जी हाँ दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। कुछ हमारा बिजनेस भी करना पड़ता है कि नहीं, ये रेडियो चलाने के लिए। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप किसी आम इंसान की तरफ नहीं, ओके, बल्कि किसी खास मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो रास्ता मुश्किल होता है दोस्तों, कभी काल लोग इसको टैकल नहीं करना चाहते हैं। कुछ किसी भी चीज आप आसान से नहीं पा सकते, अगर मिल गया तो गुड लक, लेकिन फिर भी अभी तो अपना लोटो वेट कर रहे हैं जो बोट हमको लेकर जाना है आप सभी को।

0: बहुत प्यारा गाना था.
1: इट वाज ए
0: गुस्सा मत करो बिकॉज मनाने का मुझे पास आदत नहीं है ऐसे कुछ था. तो भाई लोग वो गुस्साइए मत. गुस्सा जब किसी को आता है तो जब गुस्सा किसी को आता है दोस्तों, तो जब गुस्सा में होते हैं आप पागल की तरह हो जाते हैं. फिर बाद में जब गुस्सा उतरता है तो आप बोलते होंगे क्यों ऐसे कह दिया. आप बोलते होंगे नहीं बोलते होंगे, मैं बोलता हूं अपने आप को कभी कभी. और आज कुछ मैं कोशिश करता हूं कि गुस्से को काबू में रखे. आजकल बहुत गुस्सा तो आता ही नहीं, कुछ कैसा करता नहीं कि कोई मुझे कुछ गुस्सा है. सो लेकिन कभी कभी कुछ लोग को हम देखकर उनसे सीखते हैं. जैसे मैं कभी भूल अब नहीं भूलूंगा, जैसे उसका क्या नाम है ओबामा के वाइफ
1: मिशेल,
0: शी सेड इट सो नाइसली, एवरीबॉडी शुड लिसन टू द स्पीच. ही सेज आई हैव येट टू सी माय हस्बैंड गेट मैड. That's a big statement.
1: That's a big statement, eh?

0: बड़ा सुंदर वर्ड है कांचा और कांची ना. कांची रे कांची रे. एनीवे आगे बढ़ते हैं दोस्तों. और इस समय कितना बच गया है? अरे जाने का वक्त होने वाला है. मैं तो टाइम की वो देखा ही नहीं. लेकिन चलो बहुत से आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और
1: आई थिंक
0: या
1: वी प्रोबेबली कैन पुट टू सॉन्ग्स.
0: ओके लेट्स गो फॉर इट. या
1: लेट्स गो फॉर इट.

0: ओके जाने का वक्त हो गया है दोस्तों और समय भी बहुत कम है और बहुत सा प्यारा गाना अभी आपने सुना है. वन ऑफ दोस वेरी यूनिक काइंड ऑफ सॉन्ग्स इज़न्ट इट. शंकर जय किशन के संगीत पर आपने सुना था इस गीत को दोस्तों और बहुत अच्छा लगा. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा और हमारा यहाँ से जाने का वक्त हुआ.
1: यस सो वी विल से नमस्ते गुड बाय हैव अ ब्यूटीफुल डे.

बैक अलसाई सी सुबह में, लेजी से इन लम्हों में एक बार फिर से सताक्षी आपके साथ है। मैं जानती हूँ कि सुबह उठने का दिल बिल्कुल नहीं करता है, मैं जानती हूँ कि दिल करता है बस 2 मिनट और यार, बस अभी उठते हैं, है ना। लेकिन देखिए रात अब जा चुकी है, ठीक उन फेलियर्स की तरह जो शायद कल तक आपकी जिंदगी में थे, लेकिन आज की सुबह की किरण के साथ उन्होंने आपको अलविदा कह दिया है। तो आप भी अपने इस लेजीनेस को, अपने इस आराम वाले पलों को, अपने इस आलस को अलविदा कह दीजिए और शुरुआत कीजिए आज के दिन की मेरे साथ। इस अगले ट्रैक के साथ फिलहाल आपको आगे लेकर चल रही हूँ। के प्लस टू आपका अपना रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

पुरसानी 1701 AM आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कुछ बेहतरीन मॉर्निंग ट्रैक्स भी। चलिए बात की जाए फोकस की। जी हाँ, फोकस जो है वो जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो, हम में से बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मोटिवेशन तो आ जाता है पर टिकता नहीं है। तुम सताक्षी इतना सब कुछ समझाती तो हो, हम समझते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अप्लाई नहीं कर पाते। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ शुरुआत करता है लेकिन आपकी आदत आपको आगे लेकर जाती है। अगर आप करियर में स्टिक फील कर रहे हैं या आप नए गोल सेट करना चाहते हैं तो याद रखिए आज का दिन परफेक्ट है। अपनी रिस्किलिंग पर ध्यान दीजिए, एक नई शुरुआत में अपनी आदतों को बदलिए और ये हमेशा याद रखिए कि आज का लिया गया आपका छोटा सा फैसला भी आपकी जिंदगी के 5 साल, जी हाँ 5 साल कम से कम बदल सकता है। ठीक है जी, तो बहुत जरूरत है खुद पर फोकस करने की, खुद पर ख्याल रखने की, खुद के साथ थोड़ा वक्त गुजारने की और ये समझने की कि आखिर आपको जिंदगी से चाहिए क्या। तो फोकस करने की आदत डालिए। उसके लिए आप अगर ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रसवानी 1701 AM।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत वन ऑफ द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
9: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
10: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
9: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
10: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
11: वेलकम बैक, रेडियो ब्रिसवानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। आइए बढ़ते हैं गानों के हैट्रिक की ओर। जी हाँ, तीन बैक टू बैक ट्रैक्स एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई है सताक्षी। और ये गाने जो है ये एक बार फिर से सदाबहार गाने हैं, बॉलीवुड के वो गाने हैं, हमारे वो मॉर्निंग ट्रैक्स हैं जिन्हें आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिसवानी, हमारे साथ सुनते रहिए गानों के हैट्रिक। ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

बैक टू बैक ट्रैक्स का हमारा सफर गानों की हैट्रिक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ। गानों की हैट्रिक का ये लास्ट ट्रैक और इसके बाद होंगी ढेर सारी बातें आपके अपने ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का ये तीसरा ट्रैक।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: रेडियो ब्रिजवाणी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पी हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

Yeah, welcome back. It happens. Enjoy कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर. तो बात कर रही थी मैं फोकस की और मैंने कहा था कि आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगी. देखिए ये तो आप जानते हैं कि योग करने से ना हमारी ब्रेन बहुत मजबूत होता है और फोकस करने में आपका ब्रेन आपकी बहुत हेल्प करता है. इसके अलावा मुद्राएं, जी हाँ मुद्रा जो है, जैसे ओम के लिए हम अंगूठे और अपने इंडेक्स फिंगर को मिला लेते हैं ना, तो ओम वाली मुद्रा बन जाती है. जनरली हम पूजा में वो मुद्रा यूज करते हैं. इसी तरह से हमारी मुद्राएं जो हैं वो हमारे फोकस को भी बढ़ा सकती हैं. लाइक आकाश मुद्रा, आपकी मिडल फिंगर और थंब का जब पोर आप टच करते हैं, याद रखिए नेल्स नहीं पोर टच करना होता है, और डेली आप 5 मिनट्स की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बढ़ने लगता है क्योंकि आपका आकाश तत्व मजबूत होने लगता है. इसके साथ साथ दोस्तों त्राटक भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको फोकस करने में दिक्कत आती है. एक दिए को जलाकर बिल्कुल बंद कमरे में बैठ जाइए और पूरे फोकस से बस उस दिए को देखते रहिए जितनी देर हो सके बिना पलखें झपकाए. त्राटक जो है आपके फोकस को कई गुना हायर लेवल पर ले जाता है. सो ये छोटी छोटी सी चीजें, ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस आपके फोकस को कई गुना आगे ले जाती है. और ये सब कुछ नहीं भी कर सकते तो एक्सरसाइज जरूर कीजिए ताकि बॉडी फिट रहे तो ब्रेन फिट रहेगा. एक और ट्रैक सताक्षी के साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपनी रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर.

हैपेंस आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रीजो ब्रिस्वानी पर, और इट हैपेंस में आपके साथ हो रही हैं आज सताक्षी की फिर से कुछ बहुत ही गहरी और खास बातें। वैसे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है हमारी जिम्मेदारियों का बोझ भी हमें ज्यादा महसूस होने लगता है, कभी परिवार की जिम्मेदारी तो कभी काम का प्रेशर, कभी सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस, और अक्सर इन जिम्मेदारियों को हम एक बोझ मान लेते हैं। लेकिन मैं आपसे आज कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये कि जिम्मेदारियां असल में बोझ नहीं होती हैं, बल्कि इस बात का प्रूफ, इस बात का सबूत है कि आपकी लाइफ में आप मैच्योर हो रहे हैं और लोग आप पर भरोसा करते हैं। बहुत जरूरी है कि अपनी जिम्मेदारियों को बोझ ना समझें, आप उनके साथ आप खुद दबा हुआ ना महसूस करें, बल्कि ये समझें कि लोगों को अब लगने लगा है कि आप हैंडल कर लेंगे, है ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है, वैसे इस पर मैं आगे बात करूंगी, कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खुद को बहुत प्रेशराइज्ड करें कि यार कैसे भी करके मुझे जिम्मेदारी निभानी है, नहीं, खैर इस पर आगे बात होगी। लेकिन भाई फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि जिम्मेदारियां मतलब आप में मैच्योरिटी आ रही है, भाई साहब बड़े हो रहे हैं आप। एक और ट्रैक सुनिए हमारे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 एफएम पर।